0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ना किसी हीरो के बारे में, ना किसी हीरोइन के बारे में, यहाँ वो गाने हैं जहाँ म्यूजिक ही असली मेन कैरेक्टर है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। वो गाने जो किसी पिक्चर के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर एक्ट्रेस के लिए नहीं, आर्टिस्ट खुद अपनी कहानी सुनाने के लिए बनाते हैं, यानी द नॉन फिल्म पॉप सॉन्ग्स। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई री एंट्री है। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। ऑफ कोर्स अ स्पेशल शाउट आउट, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ कनेक्ट करो। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लियर के लिरिक्स, सुनी की कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स क्राउड फेवरेट एल्विश यादव। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, साडी सोनस दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से चार पोजीशन नीचे गिरकर दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, साडी सोनस ऑन नंबर 10, बैंगल्स ऑन नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।
2: हाउ चुप कर लंघ जावे, कोल दी तू संघ जावे, इको तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे, लोकी

0: लाल लाल कलर ची बांगड़ी वांगड़ी यानी बैंगल्स, संजू राठौड़ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स, उनका मराठी पॉप गाना ब्रेकिंग लैंग्वेज एंड बैरियर्स 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स वन ऑफ दोज कोलैब्स जो आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड इन दोनों ने साथ में पहले कोई गाना नहीं किया, एंड नाउ जब आप ये गाना सुन चुके हैं, एवरीथिंग अबाउट दिस कोलैबोरेशन जस्ट मेक सेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट जसलीन रॉयल एंड बादशाह, उनका नया नवेला गाना इनाम। काउंटडाउन का अगले वाला गाना है, बट बिफोर वी प्ले द सॉन्ग आई हैव टू टॉक अबाउट जसलीन रॉयल। वो इस म्यूजिक इंडस्ट्री की ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। पिछले कुछ सालों से तो शी इज बीन गिविंग अस बैक टू बैक वायरल हिट्स लाइक हीरिए। ये गाना जसलीन ने कंपोज किया था, अरिजीत सिंह ने गाया है उनमें उसके साथ। देन ऑल्सो साहिबा विद स्टेबिन। दोनों गाने बिल्कुल वायरल, दोनों जसलीन ने कंपोज किए थे, बट यू नो जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उनकी बिगिनिंग्स कैसी हुई थी। आई हैड द प्रिविलेज टू स्पीक टू जसलीन, मैंने कई दफा उनके इंटरव्यू किए हैं, एंड हर बार आई हैव जस्ट मेट दिस इनक्रेडिबल गर्ल, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन जो लुधियाना से मुंबई आई। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के उन्होंने अपनी पहचान इस इंडस्ट्री में बनाई। आई हेट टू से इट बट वेरी वेरी फ्यू फीमेल कंपोजर्स हैव बीन एबल टू फाइंड देयर वॉइस। जहां जसलीन की आवाज सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वो उनका गाना है। आई लव द कंपोजर दैट शी इज। आई एम श्योर इस गाने पे हर किसी ने फील्स लिए हैं।

इस गाने पे इतनी रील्स बनाई हैं आपने. दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कम्पोज बाय जसलीन, सिर्फ गाया नहीं है उन्होंने. देन शेरशाह का रांझा जो बीप्राक ने गाया है वो भी जसलीन रॉयल ने ही कंपोज किया है. तो अब जब उन्होंने बादशाह के साथ ये गाना किया है, इट इज अ स्पेशल वन. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना, गाने का नाम है इनाम. इट्स अ री एंट्री दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है करिका. एंजॉय. नंबर 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: ऐश किंग की आवाज, गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Mirchi Bird, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jaye. Mera handle is @RJKanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Gaana number 7 par humne Ash King ki awaaz mein Kinia Soni suna. Usse pehle Jasleen Royal and Badshah ka gaana Inaam, jo ki ek re-entry tha on Gaana number 8. Jasleen is one of those artists jinhone bahut bade artists ke liye film ke gaane bhi compose kare aur apne non-film gaane bhi utne hi bade bana diye. And it's not at all an easy feat. कहीं ना कहीं मैं और आप वायर्ड हैं कि जब किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री या किसी बड़ी पिक्चर में कोई गाना आता है ना, तो हमें लार्जर देन लाइफ लगता है। हम सिंगर को भी याद रखते हैं, एक्टर्स को याद रखते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा कंपोजर्स को भूल जाते हैं। बट कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, दे आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी गुड सॉन्ग जो हमें पसंद है। जसलीन इज अ कंपोजर बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: कहता कुछ और करता है और लेता है क्यों तू दिल पे जोर बदला बदला।
0: गली बॉय के साउंड ट्रैक से है ये गाना, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन द एल्बम एंड ऑफ जसलीन। खो गए हम कहाँ हो गया या शेरशाह का रांझा हो गया, ये बहुत बड़े फिल्मों के गाने उन्होंने किए हैं, बट उनकी म्यूजिक करियर का जिक्र आई थिंक हीरिये के बिना अधूरा है। एंड आई रियली बिलीव कि उनके करियर का सबसे बड़ा गाना है फिल्म के गानों से बड़ा, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस जिनके लिए उन्होंने काम किया उससे बहुत बड़ा, कॉज हर तरीके से पूरा क्रिएटिव डायरेक्शन विजन जसलीन का है। 2023 में गाना आया, अरिजीत सिंह ने उनके साथ इस गाने में गाया है, वीडियो में दलकर सलमान है। दिस सॉन्ग वॉज अ फिनोमेना, एक वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा गाना बनने वाला था। एंड जस्ट द फैक्ट दैट उनकी जर्नी, उनकी बिगनिंग्स कितनी हम्बल थी, ये सोच के आई ऑलवेज फील सो इमोशनल फॉर एवरी आर्टिस्ट, कि यही तो होते हैं वो फुल सर्कल मोमेंट्स जिनके लिए हम सब मेहनत करते हैं, इसीलिए हीरिये मैटर्स। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इफ यू आर समवन जो अपनी ड्रीम पे काम कर रहे हैं, एक दिन उसको अपना हीरिये मोमेंट जरूर मिलेगा। जसलीन रॉयल, अरिजीत सिंह की आवाज, जसलीन की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है हीरिये, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

जसलीन रॉयल अरिजीत सिंह की आवाज में, एक गाने का नाम है हीरी। ये सुन के ही मुझे ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है ऑफ सोशल मीडिया कोर्स। आई रिमेम्बर एक साल पहले हर स्क्रोल में सिर्फ यही गाना बजता था। Now back to the countdown, अगले बार एक गाने की बारी। आदित्य रिखारी, रैवटोर, कुटले खां का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद अनीश सरकार, हृदय का गाना, उड़ी उड़ी, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। तो कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। चलो काउंटडाउन पर अब आगे बढ़ने से पहले वक्त की सुई थोड़ी पीछे घुमाते हैं। आंखें बंद करके एक सीन इमेजिन करो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बस मेंटली इमेजिन करो, आंखें रोड पर। छोटा सा कमरा, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और वो क्लिक वाली आवाज जब आपने कैसेट अंदर डाली और आपका फेवरेट गाना ऑन। कोई स्किप बटन नहीं है बॉस, गाना सुनना ही है क्योंकि गाना हमको बहुत पसंद है। दीज आर द सॉन्ग्स जिन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसरत क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के वही आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं जिनको सुन के हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज

And the song we're going to feature this week is गाने का नाम है आंखों में तेरा ही चेहरा बाय द बैंड आर्यन। साल 1999 में ये गाना रिलीज हुआ। आवाज जय वालिया की है। इस गाने को सुन के मुझे वही जमाना याद आ जाता है जब प्यार बहुत सिंपल था। कोई लफड़ा ही नहीं था कि सीन पे छोड़ दिया, ब्लू टिक नहीं आया, ऑनलाइन है या नहीं है, कोई तरीका

यार व्हाट अ सॉन्ग दिस इज, जय वालिया की आवाज, दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा, यू नो जब दिल कच्चा था और प्यार सच्चा था, ये उसी जमाने का गाना है। एट RJ करेगा और इंस्टाग्राम पर आओ, मुझे बताओ ऐसा 90s 2000s का गाना जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ क्विकली एक इंडी पॉप क्विज। आंखों में तेरा ही चेहरा में एक बहुत बड़े हिंदी फिल्म एक्टर हैं, बट उनकी पहली मूवी से पहले ही वो इस गाने में फीचर हो चुके हैं। जल्दी जल्दी बताओ, दुबला सा पतला सा प्यारा सा लड़का कौन है जो आंखों में तेरा ही चेहरा में फीचर हुआ था। एट RJ कनेक्ट और इंस्टाग्राम पर आके बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर आर्टिस्ट के दिल की कहानी, गाने का नाम है अर्ज किया है। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग हैज बीन ऑन अ काउंटडाउन फॉर 25 वीक्स एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू। अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 3।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। नाउ गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। देन संजू राठौड़ का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। एक री एंट्री हुई है जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम ऑन गाना नंबर 8। एश किंग का किनिया सोनी दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उसके बाद गाना नंबर 6 पर आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खां का कोक स्टूडियो सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी। लविंग दिस सॉन्ग अनीश सरकार, हृदय का गाना उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 5। तो दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 4। अनूप जैन का अर्ज किया है स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 3।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: The top 2 songs of the week, एक quick shuffle हुआ है, एक गाना ऊपर एक गाना नीचे। मिटर और की आवाज, उन्हीं की composition along with स्वरा वर्मा, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके शीशा is this week on गाना number 2 and the numero uno song of the week। एक बार फिर से एक position ऊपर jump करके बंजारे का गाना बैरन, this हरियाणवी sensation of a song, 16 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। Baron is this week on Gana number 1. Ye dono gaane back to back, Shisha on number 2 and Baron on number 1, only on Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
0: Number 2.

ये वर्ल्ड कप हमें सिर्फ गोल्स नहीं गूस बम्प्स दे गया, लास्ट मिनट विनर्स, पेनल्टी हार्ट ब्रेक्स, वीएआर पे आर्ग्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स, और अब बस एक मैच बाकी है। Hello and welcome to Club Mirchi World Cup Final Weekend and this is your host Mirchi Oyontika. With me is DJ Richard and World Cup Final Weekend Special finally begins. One more night to cover.

माननी ही पड़ेगी, इस वर्ल्ड कप ने एज को सिर्फ एक नंबर बना दिया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार जब भी फील्ड पे आए, पूरी दुनिया ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। Legends don't ask for attention, they own it. Like we own the attention at Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, all you own dekha. Welcome guys.

एंट्री बाय स्पेन इन द फिनाले। लामिन यमाल ने पेनल्टी दी थी, माइकल ने फिनिश किया और पेड्रो पोरो ने गेम सील कर दिया। सही बोला था मैंने, टुडेज स्पेन विल बी टुमारोज स्पेन फॉर फ्रांस।

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक क्लब मिर्ची जारी है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल गाइस।

DJ Richard and Mirchi on your own. सिर्फ एक रात की इंतजार इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन लमीन यमाल। एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो। फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका। दिस इज द साउंड

0: Mirchi. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पीपल। वीआर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

एमबापे और फ्रांस से सबको फायरवर्क्स की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट की तरह डिसिप्लिन से लॉक कर दिया। 6 क्लीन शीट्स इन 7 मैचेस, दैट्स चैंपियनशिप फुटबॉल क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका वेटिंग फॉर द नाइट।

रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप इमोशनल था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। ट्रॉफी आए ना आए, एक ईरा को सल्यूट करना तो बनता है। वही करेंगे हम क्लब मिर्ची पे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो।

वेलकम बैक फुटबॉल फैनेटिक्स। पेनल्टी शूट आउट देखते वक्त सिर्फ प्लेयर्स का बीपी ही नहीं, पूरी दुनिया का हार्ट बीट सिंक हो जाता है। इस वर्ल्ड कप के नर्व्स ने भी फुल फिटनेस टेस्ट ले लिया है। क्लब रिची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर एंड द फ्यूचर बिगिंस टुमारो मिडनाइट।

इस वर्ल्ड कप ने एक बात क्लियर कर दी, रेप्यूटेशन से नॉकआउट राउंड्स नहीं जीती जाती। हर मैच ने नया हीरो दिया और हर राउंड ने नई कहानी। जस्ट व्हाट वी हैव सीन सो फार, क्लब मिर्ची पे सेलिब्रेट कर रहे हैं द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल फुटबॉल। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका आपके साथ। दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

एक जेनरेशन रोनाल्डो के लिए चीयर कर रही थी, दूसरी मेसी के लिए, तीसरी नेमार के मैजिक का वेट कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप ने फिर याद दिलाया गेम हमेशा किसी एक प्लेयर से बड़ा होता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

VAR फुटबॉल का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेयर इस वर्ल्ड कप में जितनी बार रेफरी स्क्रीन के पास गया उतनी बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए. Well, cheers to all the constructive criticisms. Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, Oyontika.

वेलकम बैक वंस अगेन क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। इस बार स्टेडियम में सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला गया, कल्चर्स मिले, चांस मिले, टीयर्स मिली, हग्स मिली। इसीलिए वर्ल्ड कप टूर्नामेंट नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन तो क्लब मिर्ची पे बनता है। इसीलिए दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल गाइस।

नेमार की जर्नी रोलर कोस्टर रही, ब्राजील का कैंपेन राउंड ऑफ 16 में खत्म हुआ, इमोशंस भी बाहर आए और फैंस भी डिवाइडेड दिखे, लेजेंड्स भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं बॉस, इसीलिए फुटबॉल इतना ब्लड एंड स्वेट रियल लगता है। क्लब मिर्ची, द पार्टी गेट्स रियल हियर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका, लेट्स गो।

पेनल्टी शूटआउट का नाम सुनते ही हार्ट रेट डबल, गोलकीपर हीरो, स्ट्राइकर विलेन और अगले मिनट रोल्स रिवर्स। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का नाम वर्ल्ड कप है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, एंड वी आर वेटिंग फॉर द फिनाले गाइस।

मेसी चाहे हेडलाइंस में हो या ना हो, कैमरा उन्हें ढूंढ ही लेता है। कुछ प्लेयर्स मैच खेलते हैं, कुछ पूरी जेनरेशन को फुटबॉल से प्यार करना सिखा देता है। एंड वी नो मेसी इज द वन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका।

इस बार सिर्फ स्टार्स नहीं चमके, ब्रेकआउट प्लेयर्स ने भी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। हर वर्ल्ड कप एक नया पोस्टर बॉय देता है और 2026 भी एक्सेप्शन नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, लेट मी नो योर पोस्टर बॉय ऑफ दिस वर्ल्ड कप। फाइंड मी ऑन सोशल्स, आई गो बाय ओयोंतिका, AYANT

के चांस, फेस पेंट, टीयर्स, हग्स इस वर्ल्ड कप ने फिर प्रूव कर दिया कि पासपोर्ट अलग हो सकता है लेकिन फुटबॉल लैंग्विज सबकी सेम होती है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका एंड दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल.

फाइनल सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं, लेगेसी के लिए भी होगा। कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ लोग हिस्ट्री लिखेंगे। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर दिगा। द वेट इज

और पूरी दुनिया अब वेट कर रही है, सिर्फ एक रात बाकी है, फिर फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेज रोशन होगा। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका एंड वी आर सेलिब्रेटिंग

मंडे को ऑफिस में प्रोडक्टिविटी कम होगी, लेकिन फुटबॉल डिस्कशंस ऑल टाइम हाई। फाइनल के बाद हर फैन के पास एक स्टोरी जरूर होगी। चीयर्स टू ऑल ऑफ दैट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका। फॉलो रिचर्ड, ही गोज बाय डीजे रिचर्ड ऑफिशियल।

90 मिनट्स या शायद 120, शायद पेनल्टीज, लेकिन गारंटी सिर्फ एक है, संडे मिडनाइट के बाद एक नया चैंपियन होगा और हम सब उस मोमेंट के गवाह होंगे। और इस एक्साइटमेंट का परफेक्ट साउंडट्रैक क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड राइट हियर राइट नाउ।

ये वर्ल्ड कप हमें सिर्फ गोल्स नहीं गूस बम्प्स दे गया, लास्ट मिनट विनर्स, पेनल्टी हार्ट ब्रेक्स, वीएआर पे आर्ग्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स, और अब बस एक मैच बाकी है। हेलो एंड वेलकम टू क्लब मिर्ची वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड, एंड दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका, विद मी इज डीजे रिचर्ड, एंड वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल, वन मोर नाइट टू

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गॉड। सिर्फ एक रात की इंतजार। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हेडलाइन लामिन यमाल, एज तो सिर्फ नंबर लगती है जब कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो। फुटबॉल का फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में खेल रहा है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गॉड। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

एक बात तो माननी ही पड़ेगी, इस वर्ल्ड कप ने एज को सिर्फ एक नंबर बना दिया। रोनाल्डो, मेसी, नेमार जब भी फील्ड पे आए, पूरी दुनिया ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। लेजेंड्स डोंट आस्क फॉर अटेंशन, दे ओन इट, लाइक वी ओन द अटेंशन एट क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वेलकम गाइस।

रोनाल्डो के लिए ये वर्ल्ड कप इमोशनल था। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। ट्रॉफी आए ना आए, एक ईरा को सल्यूट करना तो बनता है। वही करेंगे हम क्लब मिर्ची पे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लेट्स गो।

एम्बापे और फ्रांस से सबको फायरवर्क्स की उम्मीद थी, लेकिन स्पेन ने उन्हें पूरे टूर्नामेंट की तरह डिसिप्लिन से लॉक कर दिया। 6 क्लीन शीट्स इन 7 मैचेस, दैट्स चैंपियनशिप फुटबॉल। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंदिका वेटिंग फॉर द नाइट।

इस वर्ल्ड कप ने एक बात क्लियर कर दी, रेप्यूटेशन से नॉकआउट राउंड्स नहीं जीती जाती। हर मैच ने नया हीरो दिया और हर राउंड ने नई कहानी। जस्ट व्हाट वी हैव सीन सो फार, क्लब मिर्ची पे सेलिब्रेट कर रहे हैं द बिगेस्ट गेम ऑफ ऑल फुटबॉल। डीटर रिचर्ड मिर्ची।

VAR फुटबॉल का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेयर। इस वर्ल्ड कप में जितनी बार रेफरी स्क्रीन के पास गया उतनी बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। Well, cheers to all the constructive criticisms, Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi, Oyontika.

इस टूर्नामेंट का असली प्लॉट ट्विस्ट? जितनी हेडलाइंस फेवरेट्स ने नहीं बनाई, उतनी उन टीम्स ने बना दिया जिन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। वर्ल्ड कप हमेशा नाम से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो।

नेमार की जर्नी रोलर कोस्टर रही। ब्राजील का कैंपेन राउंड ऑफ 16 में खत्म हुआ। इमोशंस भी बाहर आए और फैंस भी डिवाइडेड दिखे। लेजेंड्स भी हार्ट ब्रेक फील करते हैं बॉस, इसीलिए फुटबॉल इतना ब्लड एंड स्वेट रियल लगता है। क्लब मिर्ची, द पार्टी गेट्स रियल हियर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका। लेट्स गो।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पीपल। वीआर से प्यार हो या नफरत, इग्नोर तो किसी ने नहीं किया। हर दूसरे मैच के बाद एक नया डिबेट और हर डिबेट के बाद एक नया मीम। फुटबॉल और ओपिनियंस वर इनसेपरेबल इन दिस टूर्नामेंट। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

वेलकम बैक फुटबॉल फैनेटिक्स। पेनल्टी शूटआउट देखते वक्त सिर्फ प्लेयर्स का बीपी ही नहीं, पूरी दुनिया का हार्ट बीट सिंक हो जाता है। इस वर्ल्ड कप के नर्व्स ने भी फुल फिटनेस टेस्ट ले लिया है। क्लब रिची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर एंड द फ्यूचर बिगिंस।

एक जेनरेशन रोनाल्डो के लिए चीयर कर रही थी, दूसरी मेसी के लिए, तीसरी नेमार के मैजिक का वेट कर रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप ने फिर याद दिलाया गेम हमेशा किसी एक प्लेयर से बड़ा होता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका, दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल।

पेनल्टी शूटआउट का नाम सुनते ही हार्ट रेट डबल, गोलकीपर हीरो, स्ट्राइकर विलेन और अगले मिनट रोल्स रिवर्स। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का नाम वर्ल्ड कप है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, एंड वी आर वेटिंग फॉर द फिनाले गाइस।

मेसी चाहे हेडलाइंस में हो या ना हो, कैमरा उन्हें ढूंढ ही लेता है। कुछ प्लेयर्स मैच खेलते हैं, कुछ पूरी जेनरेशन को फुटबॉल से प्यार करना सिखा देता है। एंड वी नो मेसी इज द वन। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

स्टेडियम के चांस, फेस पेंट, टीयर्स, हग्स, इस वर्ल्ड कप ने फिर प्रूव कर दिया कि पासपोर्ट अलग हो सकता है लेकिन फुटबॉल लैंग्विज सबकी सेम होती है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, एंड दिस इज द वर्ल्ड कप फाइनल वीकेंड स्पेशल.

कल रात दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल फेस्टिवल अपने ग्रैंड फिनाले तक पहुंच जाएगा। टीम कोई भी जीते, जीत फुटबॉल की ही होगी। मैं हूं मिर्ची ओयोंतिका, विद मी इज डीजे रिचर्ड और क्लब मिर्ची। बस इतना ही। एंजॉय द फाइनल, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट और याद रखिए, ग्रेट मैचेस खत्म होते हैं, ग्रेट मेमोरीज कभी नहीं। टाटा।

0: It's hot.
1: मिर्ची, it's hot.

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Mirchi. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
0: Mirchi, it's hot.

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
4: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स स्पेशली इंडियन फेस्टिवल्स बिकॉज हर फेस्टिवल में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है एंड आई थिंक दैट इज व्हाट रियली एक्साइट्स मी और नया कॉन्सेप्ट होता है यू नो दिवाली के टाइम हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के टाइम हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सोचते हैं कंप्यूटर की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं सो मेनी डिफरेंट आइडियाज कीप कमिंग सो जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in 6 days. On the 7th day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims वो Friday होगा, Jewish लोगों में वो Saturday होता है, Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है, Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है, based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलीडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलीडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइव सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर यू आर थिंकिंग व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम। कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं। पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं, उनका रूप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था। मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव। तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में, इन स्प्रिंग टाइम, और गणिकाएं नाचती थी। ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन, राजा के जो गार्डन था वहां पे उनको बुलाया जाता था, वहां पे खाना पकता था। दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे, कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए। सो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव। आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे। ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री, वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड आई कीप सेइंग अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है। यू नो होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव। अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है। फेस्टिवल ऑफ लव, वी सेलिब्रेट लव, वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव, कल भी आज भी। आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज। सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम, बट इफ यू कांट, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव। थिंक अबाउट द पर्सन हु लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली। ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आवर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: तो आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज वाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता, या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे विल नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बीइंग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बीइंग बॉर्न और विष्णु बीइंग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफकोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर नॉट ऑलवेज रिलीजियस, देयर कैन बी आल्सो सेक्युलर फेस्टिवल्स। जैसे हार्वेस्ट टाइम में जब हार्वेस्ट होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, दीज आर नॉट रियली रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल्स, क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट टाइम, सोइंग द सीड, तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर आइडियाज लाइक नेशन स्टेट। बर्थडेज आर ऑल्सो नॉट रिलीजियस फेस्टिवल, बट दे आर फेस्टिवल्स। सो ऑन द बर्थडे यू आर सेलिब्रेटेड बाय योर फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल्सो ए उत्सव। ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: द देवदत्त पटनायक शो। आज फेस्टिवल्स में बाजार हैं या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहाँ पे हम फेस्टिवल के ऊपर बात कर रहे हैं।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: कॉलिंग देवदत्त
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो कॉल इन, आई एम वेटिंग।
4: हाय देवदत्त, मैं हितेश बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि फेस्टिवल्स पर मार्केट ज्यादा हावी होता जा रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज तो जैसे गायब ही हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
0: थैंक यू हितेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स की शुरुआत हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है, कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट,
4: राइट?
0: बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है। ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस, सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज। आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं। तीर्थ यात्रा, बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है। तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा। मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे क्योंकि फैमिली जाती है वहां पे। सो इट इज एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट। ये होता है, इट्स ओके। अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सेंटा क्लॉज तो कंप्लीटली कमर्शियल है, उसके अध्यात्म ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं हम लोग, थैंक्स गिविंग डे के बारे में हम ज्यादातर, टर्की के बारे में लोग बात करते हैं, अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्स गिविंग है क्या, क्या इतिहास था। सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। और ऑफकोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, हैज बिकम सो पावरफुल एंड मनी हैज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी। शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल्स जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दे विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी।
4: इट वॉज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू हितेश।
2: On Radio Mirchi,
3: The Devdutt Patnaik Show.
5: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहां पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स। सो मोस्ट फेस्टिवल्स हैपन ऑन द वैक्सिंग मून टाइम। वेरी फ्यू फेस्टिवल टेक प्लेस इन द कृष्ण पक्ष और द वेनिंग मून, जब द मून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमावास की तरफ जाते हैं। सम ऑफ दोस फेस्टिवल्स आर जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का फेस्टिवल इज इन कृष्ण पक्ष, महाशिवरात्रि इज इन कृष्ण पक्ष, और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स, दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड्स स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर आल्सो रिलेटेड ऑलवेज विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स associated with astronomy, मतलब तिथि, phases of the moon, seasons, उत्तरायण दक्षिणायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं, जैसे कुंभ मेला will be associated with the Aquarius constellation, तो stars, planets, seasons, moon, movement of the sun, all of this play a very important role in festivals. इसलिए festivals के date बदलते रहते हैं lunar calendar के हिसाब से। solar calendar के कुछ festivals होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा every year January 14th को ही आएगा because it's a solar festival, लेकिन दिवाली दिन will keep shifting because it is a lunar festival. So whenever you discuss festivals, remember to look at the calendar. It is a great way to explain to children calendar, अपने दोस्तों के साथ कि नेचर में क्या हो रहा है, what is happening to the sun, what is happening to the moon, what is happening to the stars. Our festivals teach us about astronomy. तो अगर स्कूल में नहीं पढ़े हो तो at least festival के टाइम पे तो सीखो, and these are the kind of things that you must grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi. Share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: The Devdutt on Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali? Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki? Kyun hai controversy? Batayenge Devdutt. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टींग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो नाउडेज ऑफ कोर्स सबको कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, सो नाउ देयर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट ये फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है। सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन। नो दिवाली के टाइम में एक स्टोरी है। अगर आप बोलो दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, एंड लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट इज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोगों के वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है श्री कृष्ण वाले, बोलेंगे कि नहीं नहीं यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। व्हाई डू वी वांट एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, विभिन्नवाद वाला देश है। तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मांगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन एंड आस्क। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहा हूं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। सो आई एम वेटिंग।
1: शो दिवाली पर पटाखे जलाना सही या गलत, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: हाय
3: हाय, मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाती है, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st century इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हू इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी के वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
3: The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: मोहब्बत की तरह फिल्में भी कभी एक तरफ से नहीं चलती, उसके लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक जो कहानियां बनाते हैं और दूसरे जो उन कहानियों में अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। हिंदुस्तान में फिल्में कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, ये हमारे घरों में पली हैं, हमारी मोहब्बत में बसी हैं, हमारे दर्द में रोई हैं और हमारी खुशियों में नाची हैं। शायद इसलिए हम एक्टर्स को सिर्फ स्टार्स के रूप में नहीं देखते, कभी कभी हम उन्हें भगवान बना देते हैं। लेकिन हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता है, और मुझे लगता है बॉलीवुड और उसके ऑडियंस का रिश्ता भी आजकल कुछ वैसे ही दौर से गुजर रहा है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई है, लेकिन बेचैनी कहीं खोसी गई है। और मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं होती, बेपरवाही होती है। फिर भी जब कोई फिल्म या कोई गाना दिल से बनता है, हम उसे आज भी उतनी ही शिद्दत से अपना लेते हैं। इसी उम्मीद के साथ लेट मी सुरेन सुंदरम स्टार ऑफ द मिर्ची टॉप 20, जो हिंदी फिल्म म्यूजिक का आईना है, द ट्रू मिरर, और व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। और नंबर 20 पर वो गाना जो वक्त के साथ अपना बनता जा रहा है, यार इस फहीम अब्दुल्ला विद सैयारा।
3: नंबर 20।

0: पिछले कुछ हफ्तों में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग हुई। दो स्पाई फिल्म्स लगभग एक ही दौर में हमारे सामने आई। एक थी धुरंधर और दूसरी थी अल्फा। याद है मैडी ने रिलीज से पहले एक बात कही थी,
1: मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है क्योंकि एक फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा।
0: उस वक्त ये स्टेटमेंट ओवर कॉन्फिडेंट लगा था, लेकिन अल्फा देखने के बाद मुझे लगा शायद वो इतना गलत भी नहीं था। धुरंधर ने स्पाइस को हीरोज नहीं प्रोफेशनल दिखाया है। उनके डिसीजंस में एक लॉजिक था, एक रिस्ट्रेंट था। अल्फा में मुझे लगा ग्लैमर ज्यादा था, ग्राउंड रियलिटी काफी कम। और जब स्पाई फिल्म में आप ऑथेंटिसिटी खो देते हैं तो टेंशन भी खो देते हैं। स्पाई फिल्म में सबसे बड़ा वीएफएक्स ऑथेंटिसिटी होता है। एक और बात मेरी समझ से बाहर है, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स जिसकी पहचान कभी उसके म्यूजिक से भी होती थी, इस बार गाने आए लेकिन याद ही नहीं रहे। और बॉलीवुड में ये बहुत बड़ी वार्निंग होती है। अब देखना होगा स्पाई यूनिवर्स अपनी अगली चाल कैसे चलता है। फिलहाल नंबर 18 पर दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा फिसलता हुआ दिस इज क्यू फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17।

0: कभी कभी कुछ फिल्में रिलीज नहीं होती, हमें मिल जाती हैं, जैसे ये फिल्म मैं वापस आऊंगा। जब रिलीज हुई थी किसी ने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, फिर किसी ने देखी, किसी ने किसी और को बोल दिया यार ये फिल्म पक्का देखना, और बस वहीं से उस फिल्म की असली जर्नी शुरू हुई। इस दुनिया का सबसे पोटेंट और सबसे कामयाब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वर्ड ऑफ माउथ। ये इस दुनिया की सबसे ईमानदार पब्लिसिटी होती है, क्योंकि इसमें पोस्टर नहीं बोलता, इंसान बोलता है। और पता है इस फिल्म पर पूरी छाप इम्तियाज अली की ही है। उनकी फिल्में कभी मुझे थिएटर में समझ नहीं आई, घर आने के बाद समझ आई। कभी किसी तन्हा रात में, कभी किसी अधूरी मोहब्बत के बाद, कभी जब जिंदगी ने वो सवाल पूछे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था, तब लगा इम्तियाज फिल्म नहीं बनाते, वो एहसास छोड़ जाते हैं।
1: आजकल के जमाने के आप लोग जो यंग लोग हो ना, आप लोग और भी ज्यादा किसी चीज को ढूंढ रहे हो। कहते हैं कि आपके हाथ में डिवाइस है, आप बहुत आसानी से रिलेशनशिप में जाते हो, ब्रेकअप करते हो, आगे बढ़ते हो, ये सब करते हो, बहुत आसान है आपके लिए। बट इस आसानी की वजह से ना एक्चुअली ज्यादा मुश्किल हो गया है, ज्यादा लोनली हो गए आप लोग, और जो लोनली होता है वो ज्यादा ढूंढता है। विच इज वाई हमेशा मैंने देखा है कि जो यंग ऑडियंस होती है इस फिल्म में, वो ज्यादा इमोशनली देखती है, ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है।
0: शायद इसलिए कुछ फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती हैं और कुछ धीरे धीरे लोगों के अंदर पहुंच जाती हैं। और अगर आप किसी फिल्म के बारे में बार बार अलग अलग लोगों से एक ही बात सुनने लगे तो समझ लीजिए पिक्चर हिट नहीं हुई है, पिक्चर लोगों तक पहुंच गई है। नंबर 15।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 40।

कभी नोटिस किया है, हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर एक ही कंप्लेंट ट्रेंड करती है, बॉलीवुड को सीक्वल्स बनाना बंद कर देना चाहिए। एंड देन बॉक्स ऑफिस उस बात का बिल्कुल उल्टा करारा जवाब दे देता है। तुझको कॉकटेल 2 का ये खूबसूरत रोमांटिक गाना इस हफ्ते नंबर 14 पर है। फिल्म शायद उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर ना बनी हो जितनी उम्मीद थी, लेकिन इस साल की सबसे बड़ी कहानियां जरा देखिए, धुरंधर 2, बॉर्डर 2, वेलकम टू द जंगल, धमाल 4, ये सब फ्रेंचाइज फिल्म्स हैं। वेलकम टू द जंगल को लाउड बोला गया था, धमाल 4 को आउटडेटेड कहा गया था। क्रिटिक्स खुश नहीं थे, सोशल मीडिया भी इंप्रेस नहीं था, लेकिन जब टिकट्स बिकना शुरू हुई तो लोग थिएटर्स पहुंच गए। एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। प्रोड्यूसर्स इमोशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, प्रोबेबिलिटी में करते हैं। एक नई फिल्म को पहचान देने में करोड़ों लग जाते हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइज अपनी पहचान लेकर आती है। और शायद सबसे बड़ी आयरनी ये है, हम सीक्वल देखने जाते हैं और घर आकर ट्वीट करते हैं, बॉलीवुड शुड स्टॉप मेकिंग सीक्वल्स। यार हर सीक्वल अच्छा नहीं होता और हर फ्रेंचाइज चलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब तक ऑडियंस टिकट खरीद रही है तब तक पार्ट 5 भी बनेगा, पार्ट 6 भी बनेगा और पार्ट 7 भी बनेगा। और इस वक्त उसी सीक्वल की दुनिया से नंबर 13 पर है साड़ी, धमाल 4 से नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: नंबर 12।
3: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

You know, sometimes एक पुराना गाना जब वापस आता है वो हमें उस जमाने की याद दिला देता है जब उसे गाने वाली आवाज अपने करियर के पीक की तरफ बढ़ रही थी। इश्क अमीना इज टेकिंग अस बैक टू 2002, लेकिन मेरी नजर उस सोनू निगम पर है जो उससे पहले खुद को ढूंढ रहे थे। हर लेजेंड का एक गोल्डन पीरियड होता है, एंड सोनू जी के लिए वो पीरियड था व्हेन ही सैंग कल होना हो मैं हूं ना, दो पल रुका, कभी अलविदा ना कहना, अभी मुझ में कहीं। लेकिन उससे भी खूबसूरत होता है उस लेजेंड के बनने का सफर। लेट्स रिवाइंड टू 1997, एक आवाज आई जिसने बताया कि बॉलीवुड को एक नया हीरो मिल गया है।

फिर एआर रहमान ने उस आवाज को आजमाया और सोनू जी ने साबित कर दिया कि मुश्किल कॉम्पोजिशन नाम की कोई चीज नहीं होती उनके लिए।

एंड उसके बाद आए कल हो ना हो, मैं हूं ना, अभी मुझ में कहीं। लेकिन मेरे लिए सोनू निगम का असली जादू उनके सुपरस्टार बनने में नहीं, उनके सुपरस्टार बनने के सफर में था। वैसे इस हफ्ते नंबर 11 पर है वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, मगर मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक उसी दौर का एक गाना है जिसे सुनते ही लगता है मोहब्बत भी कभी एक तनहा आवाज होती है। टॉप 20 रीवाइंड।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

0: एक हफ्ता हो गया है इस गाने को लूप पे सुनते हुए। वे जुनून फ्रॉम आवारा पंटू, इमरान हाशमी का माइनस टच और मिथुन का मैजिक। और जितना गाना सुना उतना ही लोगों को भी सुना, उनके कमेंट्स, उनकी कॉन्वर्सेशंस, उनका सोशल मीडिया। और मुझे एक बात समझ में आई, हम शायद वे जुनून को सुन ही नहीं रहे, हम उसकी कंपैरिजन अपनी यादों से कर रहे हैं। आवारापन की असली लेगेसी फिल्म नहीं थी, उसका म्यूजिक था और उनके साथ जुड़ी हमारी यादें। और ये कभी इम्पार्शियल नहीं होती, पर अब कई लोग कह रहे हैं कि इसमें सैयारा की झलक है। हो सकता है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी तो है, जब हम किसी नए गाने को सुनते हैं पुराने दिल के साथ सुनते हैं, उससे वही महसूस करना चाहते हैं जो 20 साल पहले किया था, लेकिन वो मुमकिन ही नहीं है। हर सीक्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली फिल्म नहीं होती, उससे जुड़ी हुई यादें होती हैं और उनसे जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और अब देखते हैं क्या वक्त वे जुनून के साथ भी वही करता है जो उसने तो फिर आओ के साथ किया था। अनफॉर्चुनेटली अगला गाना आपके इमोशंस को उतना नहीं टटोलेगा, क्योंकि इसका नाम है चटनी। ये है फ्रॉम धमाल 4 एंड इस हफ्ते है नंबर 9 पर।
1: नंबर 9।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7।

0: समटाइम्स एक फिल्म अच्छी होती है, समटाइम्स एक एक्टर कमाल का होता है, लेकिन समटाइम्स किसी सीन को हमारे दिल में अगर कोई परमानेंट बनाता है तो वो होता है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक। एंड रहमान डकैत को देखने के लिए हम सब बेचैन थे, और इसलिए इस हफ्ते मैंने देखी इक्का। सनी पाजी बैक एज अ लॉयर एंड अक्षय खन्ना बैक एज रहमान डकैत। इट वॉज वियर्ड वॉचिंग हिम प्ले समथिंग सो सिमिलर। लेकिन एक और बात है जो मुझे बहुत ज्यादा खटकी, कुछ सीन्स सच में बहुत अच्छे थे लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक ने उन्हें वो एहसास ही नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तब मुझे समझ आया बैकग्राउंड्स को सिर्फ म्यूजिक नहीं होता, वो इमोशंस का डायरेक्टर होता है। अगर यकीन नहीं आता तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये रहना है तेरे दिल में का वो आइकॉनिक सीन है जहां माधवन दिया मिर्जा से अपने प्यार का इजहार करते हैं समंदर के सामने। पहले मैं आपको वही डायलॉग सुनाऊंगा लेकिन टोटली गलत बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ।
1: एक लड़की देखी बिल्कुल बिजली की तरह, वन फ्लैश, एक चमक और रहा, मैं अपना दिल खो बैठा। मुझे लगता है मुझे इस लड़की से बेहद प्यार हो गया है, बस अब एक ही तमन्ना है, रहना है उसके दिल में।
0: सुनने में अजीब लगा ना, डायलॉग वही था, एक्टर्स भी वही थे, हर लव्स भी वही था, बस म्यूजिक गलत था। अब बिल्कुल वही सीन, बिल्कुल वही डायलॉग, लेकिन उस बैकग्राउंड स्कोर के साथ जिसने उस मोमेंट को हमेशा के लिए इमॉर्टल बना दिया।
1: एक लड़की देखी बिल्कुल बिजली की तरह, वन फ्लैश, एक चमक और रहा, मैं अपना दिल खो बैठा। मुझे लगता है मुझे इस लड़की से बेहद प्यार हो गया है, बस अब एक ही तमन्ना है, रहना है उसके दिल में।
0: Now you feel it, right? You feel it in your heart. पर देखा आपने, सीन नहीं बदला, एहसास बदल गया। और शायद इसलिए सिनेमा पहले आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। My special request of the week उसी फिल्म से है, उसका बैकग्राउंड स्कोर आज भी मोहब्बत की डेफिनेशन लगता है। Special

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5।

0: हर बार जब कोई गाना सुपरहिट होता है हम मान लेते हैं कि उस गाने के सिंगर की जिंदगी भी बदल गई होगी, लेकिन बॉलीवुड का हिसाब किताब इतना सीधा नहीं होता। ना गुरु रंधावा का कहर फ्रॉम धमाल 4 इस हफ्ते नंबर 5 पर है और नंबर 4 पर है ये नंबर 4। पुराने गाने का नया वर्जन एंड समथिंग सिमिलर ऑन नंबर 3 एज वेल इज फ्रॉम कॉकटेल 2 एंड ये दोनों कॉकटेल फिल्म्स का सबसे लव्ड गाना है। एक ऐसा गाना जिसने सिर्फ चार्ट्स ही नहीं जीते दिल भी जीते। तुम ही हो बंधु कॉकटेल 2 का वो गाना जिसने कविता सेठ की आवाज को हर घर तक पहुंचाया। लेकिन अजीब बात यह है कि इतना बड़ा गाना देने के बाद भी प्रीतम दा और कविता जी की जोड़ी ने दोबारा कभी साथ काम ही नहीं किया। एंड मे बी दैट्स व्हाई हॉलीवुड इतना अनप्रिडिक्टेबल है। कभी ये गाना आपको हमेशा के लिए एवरग्रीन बना देता है और कभी वही गाना आपका सबसे बड़ा तोहफा भी बन जाता है और आखिरी भी। सुनिए खुद कविता सेठ से जब वो बता रही हैं कि तुम ही वो बंधु गाते वक्त उनके दिल में क्या चल रहा था।
1: तो वो गाना मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मेरे लिए बहुत हाई स्केल था, मेरी बहुत ही मिड लो टिम्बर और लो मिड टिम्बर वॉइस है, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे गाऊंगी। तो मैं जब जा भी रही थी रास्ते में थी तो मैं दादा को फोन करके बोली थी, मैंने कहा दादा मैं कैसे गाऊंगी, बहुत हाई है मेरे लिए, बहुत हाई रेंज में। बोले तुम आओ बस स्टूडियो सब समा कर लोगी तो हो जाएगा, सब आ जाओ बस तुम, बहुत ही बिंदास तरीके से। बहुत डर लग रहा था कि उस दिन कैसे गाऊंगी, लेकिन काफी सारे टेक्स देने पड़े क्योंकि वो एक एक लाइन करके मैं रिकॉर्ड कर रही थी। जब रिकॉर्ड हो गया मैंने घर आके बच्चों को बताया ही नहीं, तो जब उसके प्रोमोज आना शुरू हुए उसमें मेरा और नीरज श्रीधर का नाम लिख करके आ रहा था तुम ही हो बंधु, तो दोनों बोल रहे ये आप कब गा के आए, अच्छा लग रहा है वैसे, अच्छा लग रहा है।
0: देखो अच्छे गाने कभी रिटायर नहीं होते, हर जनरेशन उन्हें दोबारा अपना ही लेता है और इसीलिए इस हफ्ते नंबर 3 पर कॉकटेल 2 एंड कॉकटेल 1 का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर संग बाय नीरज श्रीधर एंड द लवली कविता सेठ दिस इज तुम ही हो बंधु सखा तुम ही नंबर 3।

नंबर टू विद द सुपरस्टार हु इज बैक ऑन हिज कमबैक ट्रेल। भूत बंगला के बाद एक और स्मैश हिट वेलकम टू द जंगल एंड अक्षय कुमार के तारे पूरी तरह बदल चुके हैं। और इस गाने के बाद मुझे याद आ रहे हैं एक और सुपरस्टार बाय द नेम ऑफ ऋतिक रोशन। अल्फा रिलीज हुए अब कुछ हफ्ते हो गए हैं और जितनी बातें फिल्म की नहीं हुई उतनी ऋतिक रोशन की कैमियो की हुई। वो आए, 2 मिनट रुके और चले गए। एंड तब मुझे लगा यार बॉलीवुड ऋतिक रोशन को अब थोड़ा कम समझने लगा है, क्योंकि ऋतिक कभी सिर्फ एक्टर थे ही नहीं, वो एक बेंचमार्क थे, एक स्केल थे, एक फेनोमेना थे। आज भी ये सिर्फ एक गाना नहीं लगता, ये एक जमाना लगता है। और सोचिए ऋतिक रोशन का ये एक डांस स्टेप कुछ एक्टर्स के पूरे करियर से ज्यादा याद रखा जाएगा। बस एक स्टेप, इतना बड़ा था इसका इंपैक्ट। ऋतिक रोशन वॉज द लास्ट बिग सुपरस्टार एंड अब 25 साल बाद बॉलीवुड ऋतिक रोशन को उस अंदाज में दिखा ही नहीं पा रहा है। Can you believe it that War in 2019 was his last big blockbuster? And maybe that's why. मुझे लगता है कि बॉलीवुड को फिर से उस स्केल के सुपरस्टार की सख्त जरूरत है। मेरी नजर में और शायद आपकी नजर में सिर्फ दो लोग कंटेंडर्स हैं, रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह। और टैलेंट दोनों के पास है, दे हैव सम मेजर एक्टिंग चॉप्स, लेकिन अब बारी है अपनी लेगेसी लिखने की। और इस वक्त इस रेस में जो फिल्म सबसे आगे खड़ी है उसका गाना दूसरे हफ्ते भी मिर्ची टॉप 20 का नंबर 1 सॉन्ग, गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर नंबर 1।

0: हैंड्स डाउन इस काउंटडाउन का सबसे मैजिकल गाना, दूर दूर तक कोई कंटेंडर नहीं नजर आ रहा मुझको, एंड दैट मेक्स मी रियल हैप्पी। लेकिन इस हैप्पीनेस को यही एंड करना पड़ेगा, माय टाइम इज अप, बट जब जब मिर्ची डॉट 20 लगाओगे तब तब मुझे ही पाओगे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: Mirchi, it's hot.
1: Bye.

मिर्ची, मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डांस बसंती रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

Energy. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ना किसी हीरो के बारे में, ना किसी हीरोइन के बारे में, यहाँ वो गाने हैं जहाँ म्यूजिक ही असली मेन कैरेक्टर है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। वो गाने जो किसी पिक्चर के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर एक्ट्रेस के लिए नहीं, आर्टिस्ट खुद अपनी कहानी सुनाने के लिए बनाते हैं, यानी द नॉन फिल्म पॉप सॉन्ग्स। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई री एंट्री है। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है। ऑफ कोर्स अ स्पेशल शाउट आउट ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मेरे साथ कनेक्ट करो। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स, सुनने की कॉम्पोजिशन। दिस सॉन्ग फीचर्स क्राउड फेवरेट एल्विश यादव। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। साडी सुनस दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से चार पोजीशन नीचे गिरकर दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, साडी सुन ऑन नंबर 10, बैंगल्स ऑन नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।
2: हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे

0: लाल लाल कलर ची बांगड़ी बांगड़ी यानी बैंगल्स, संजू राठौड़ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बैंगल्स, उनका मराठी पॉप गाना ब्रेकिंग लैंग्वेज एंड बैरियर्स 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स वन ऑफ दोज कोलैब्स जो आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड इन दोनों ने साथ में पहले कोई गाना नहीं किया, एंड नाउ जब आप ये गाना सुन चुके हैं, एवरीथिंग अबाउट दिस कोलैबोरेशन जस्ट मेक सेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट जसलीन रॉयल एंड बादशाह, उनका नया नवेला गाना इनाम। काउंटडाउन का अगले वाला गाना है, बट बिफोर वी प्ले द सॉन्ग आई हैव टू टॉक अबाउट जसलीन रॉयल। वो इस म्यूजिक इंडस्ट्री की ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। पिछले कुछ सालों से तो शी इज बीन गिविंग अस बैक टू बैक वायरल हिट्स लाइक हीरिए। ये गाना जसलीन ने कंपोज किया था, अरिजीत सिंह ने गाया है उनमें उसके साथ। देन ऑल्सो साहिबा विद स्टेबिन। दोनों गाने बिल्कुल वायरल, दोनों जसलीन ने कंपोज किए थे, बट यू नो जब हम किसी की सक्सेस देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उनकी बिगिनिंग्स कैसी हुई थी। आई हैड द प्रिविलेज टू स्पीक टू जसलीन, मैंने कई दफा उनके इंटरव्यू किए हैं, एंड हर बार आई हैव जस्ट मेट दिस इनक्रेडिबल गर्ल, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन जो लुधियाना से मुंबई आई। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के उन्होंने अपनी पहचान इस इंडस्ट्री में बनाई। आई हेट टू से इट बट वेरी वेरी फ्यू फीमेल कंपोजर्स हैव बीन एबल टू फाइंड देयर वॉइस। जहां जसलीन की आवाज सुनते ही हमें पता चल जाता है कि वो उनका गाना है। आई लव द कंपोजर दैट शी इज। आई एम श्योर इस गाने पे हर किसी ने फील्स लिए हैं।

इस गाने पे इतनी रील्स बनाई है आपने. दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कम्पोज बाय जसलीन, सिर्फ गाया नहीं है उन्होंने. देन शेर शाह का रांझा जो बी प्राक ने गाया है वो भी जसलीन रॉयल ने ही कंपोज किया है. तो अब जब उन्होंने बादशाह के साथ ये गाना किया है, इट इज अ स्पेशल वन. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. जसलीन रॉयल बादशाह का गाना, गाने का नाम है इनाम. इट्स अ री एंट्री दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट

0: ऐश किंग की आवाज, गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ
0: मिर्ची पर, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 7 पर हमने ऐश किंग की आवाज में किनिया सोनी सुना, उससे पहले जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम, जो कि एक री एंट्री था ऑन गाना नंबर 8। जसलीन इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत बड़े आर्टिस्ट के लिए फिल्म के गाने भी कंपोज करे और अपने नॉन फिल्म गाने भी उतने ही बड़े बना दिए। And it's not at all an easy feat. कहीं ना कहीं मैं और आप वायर्ड हैं कि जब किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री या किसी बड़ी पिक्चर में कोई गाना आता है ना, तो हमें लार्जर देन लाइफ लगता है। हम सिंगर को भी याद रखते हैं, एक्टर्स को याद रखते हैं, कहीं ना कहीं हमेशा कंपोजर्स को भूल जाते हैं। बट कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, दे आर द फाउंडेशन ऑफ एवरी गुड सॉन्ग जो हमें पसंद है। जसलीन इज अ कंपोजर बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: कहता कुछ और करता है और लेता है क्यों तू दिल पे जोर बदला बदला।
0: गली बॉय के साउंड ट्रैक से है ये गाना, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन द एल्बम एंड ऑफ जसलीन। खो गए हम कहाँ हो गया या शेरशाह का रांझा हो गया, ये बहुत बड़े फिल्मों के गाने उन्होंने किए हैं, बट उनकी म्यूजिक करियर का जिक्र आई थिंक हीरिये के बिना अधूरा है। एंड आई रियली बिलीव कि वो उनके करियर का सबसे बड़ा गाना है, फिल्म के गानों से बड़ा, किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस जिनके लिए उन्होंने काम किया उससे बहुत बड़ा, बिकॉज हर तरीके से पूरा क्रिएटिव डायरेक्शन विजन जसलीन का है। 2023 में गाना आया, अरिजीत सिंह ने उनके साथ इस गाने में गाया है, वीडियो में दलकर सलमान है। This song was a phenomena. एक वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा गाना बनने वाला था। And just the fact that उनकी जर्नी, उनकी बिगनिंग्स कितनी हम्बल थी, ये सोच के I always feel so emotional for every artist कि यही तो होते हैं वो फुल सर्कल मोमेंट्स जिनके लिए हम सब मेहनत करते हैं। इसीलिए हीरे मैटर्स। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इफ यू आर समवन जो अपनी ड्रीम पे काम कर रहे हैं, एक दिन उसको अपना हीरे मोमेंट जरूर मिलेगा। जसलीन रॉयल, अरिजीत सिंह की आवाज, जसलीन की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है हीरे, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

जसलीन रॉयल अरिजीत सिंह की आवाज में, एक गाने का नाम है हीरी है। ये सुन के ही मुझे ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है ऑफ सोशल मीडिया कोर्स। आई रिमेम्बर एक साल पहले हर स्क्रोल में सिर्फ यही गाना बजता था। Now back to the countdown, अगले बारे गाने की बारी। आदित्य रिखारी रावटोर कुटले खां का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 6। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 6।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On मिर्ची
0: पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाए, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। तो कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। चलो काउंटडाउन पर अब आगे बढ़ने से पहले वक्त की सुई थोड़ी पीछे घुमाते हैं। आंखें बंद करके एक सीन इमेजिन करो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बस मेंटली इमेजिन करो, आंखें रोड पर। छोटा सा कमरा, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और वो क्लिक वाली आवाज जब आपने कैसेट अंदर डाली और आपका फेवरेट गाना ऑन। कोई स्किप बटन नहीं है बॉस, गाना सुनना ही है क्योंकि गाना हमको बहुत पसंद है। दीज आर द सॉन्ग्स जिन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के वही आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं जिनको सुन के हमें इंडी पॉप से मोहब्बत हुई। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वाज

गाना रिलीज हुआ, आवाज जय वालिया की है। इस गाने को सुन के मुझे वही जमाना याद आ जाता है जब प्यार बहुत सिंपल था, कोई लफड़ा ही नहीं था कि सीन पे छोड़ दिया, ब्लू टिक नहीं आया, ऑनलाइन है या नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है ये पता लगाने का, तो आप बस ख्याली पुलाव बना रहे हैं अपने दिमाग में। जो स्टेजेस ऑफ लव होते हैं ना, उसमें इन्फैटुएशन सबसे प्यारा होता है, जब पेट में वो प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, जब दिमाग में हम सिर्फ उनसे मिलने के सपने देख रहे हैं या उनसे जब मिले थे उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली कैप्चर्स दैट कि आंखों में तेरा ही चेहरा, आई एम थिंकिंग अबाउट यू ब्रो। दिस इज द काइंड ऑफ लव जो हर लड़की चाहती है कि किसी लड़के को उससे हो जाए। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, इट्स टाइम टू फील दैट ओल्ड स्कूल लव। जय वालिया की आवाज में आर्यन ज़बान का गाना दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

यार व्हाट अ सॉन्ग दिस इज, जय वालिया की आवाज, दिस इज आंखों में तेरा ही चेहरा. यू नो जब दिल कच्चा था और प्यार सच्चा था, ये उसी जमाने का गाना है. एट RJ करेगा और इंस्टाग्राम पर आओ, मुझे बताओ ऐसा 90s 2000s का गाना जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ क्विकली एक इंडी पॉप क्विज. आंखों में तेरा ही चेहरा में एक बहुत बड़े हिंदी फिल्म एक्टर हैं, बट उनकी पहली मूवी से पहले ही वो इस गाने में फीचर हो चुके हैं. जल्दी जल्दी बताओ, दुबला सा पतला सा प्यारा सा लड़का कौन है जो आंखों में तेरा ही चेहरा में फीचर हुआ था. एट RJ कनेक्ट और इंस्टाग्राम पर आके बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, हर आर्टिस्ट के दिल की कहानी. गाने का नाम है अर्ज किया है. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग हैज बीन ऑन अ काउंटडाउन फॉर 25 वीक्स एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू. अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। नाउ गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। देन संजू राठौड़ का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। एक री एंट्री हुई है जसलीन रॉयल एंड बादशाह का गाना इनाम ऑन गाना नंबर 8। एश किंग का किनिया सोनी दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। उसके बाद गाना नंबर 6 पर आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खां का कोक स्टूडियो सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी। Loving this song, Anish Sarkar, Hriday Ka Gaana, Udi Udi on Gaana number 5. Then Diljit Dosanjh ka Dealer on Gaana number 4. Anoop Jain ka Arz Kiya Hai, Still Going Strong, this week on Gaana number 3.
2: Kaayar jo the, wo shayar bane.
1: The top 2 songs of the week, एक quick shuffle हुआ है, एक गाना ऊपर एक गाना नीचे। मिट्टर और की आवाज, उन्हीं की composition along with स्वरा वर्मा, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके शीशा is this week on गाना number 2 and the numero uno song of the week। एक बार फिर से एक position ऊपर jump करके बंजारे का गाना बैरन, this हरियाणवी sensation of a song, 16 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार। Baron is this week on Gaana number 1. Ye dono gaane back to back, Shisha on number 2 and Baron on number 1, only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
0: Number 2.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Saathi re, thoda theher ja, abhi raaste hai.

Michi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: मोहब्बत की तरह फिल्में भी कभी एक तरफ से नहीं चलती, उसके लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक जो कहानियां बनाते हैं और दूसरे जो उन कहानियों में अपनी जिंदगी ढूंढते हैं। हिंदुस्तान में फिल्में कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, ये हमारे घरों में पली हैं, हमारी मोहब्बत में बसी हैं, हमारे दर्द में रोई हैं और हमारी खुशियों में नाची हैं। शायद इसलिए हम एक्टर्स को सिर्फ स्टार्स के रूप में नहीं देखते, कभी कभी हम उन्हें भगवान बना देते हैं। लेकिन हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता है, और मुझे लगता है बॉलीवुड और उसके ऑडियंस का रिश्ता भी आजकल कुछ वैसे ही दौर से गुजर रहा है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई है, लेकिन बेचैनी कहीं खोसी गई है। और मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं होती, बेपरवाही होती है। फिर भी जब कोई फिल्म या कोई गाना दिल से बनता है, हम उसे आज भी उतनी ही शिद्दत से अपना लेते हैं, इसी उम्मीद के साथ। लेट मी सुरेन सुंदरम स्टार ऑफ द मिर्ची टॉक 20, जो हिंदी फिल्म म्यूजिक का आईना है, द ट्रू मिरर, और व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। और नंबर 20 पर वो गाना जो वक्त के साथ अपना बनता जा रहा है, यार इस फहीम अब्दुल्ला विद सैयारा।
3: नंबर 20

0: पिछले कुछ हफ्तों में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग हुई। दो स्पाई फिल्म्स लगभग एक ही दौर में हमारे सामने आई। एक थी धुरंधर और दूसरी थी अल्फा। याद है मैडी ने रिलीज से पहले एक बात कही थी,
1: मेरे सौभाग्य में ये रहा है कि मैं बहुत ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, बना नहीं लेकिन हिस्सा जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक ये होने वाली है क्योंकि फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा।
0: उस वक्त ये स्टेटमेंट ओवर कॉन्फिडेंट लगा था, लेकिन अल्फा देखने के बाद मुझे लगा शायद वो इतना गलत भी नहीं था। धुरंधर ने स्पाइस को हीरोज नहीं प्रोफेशनल दिखाया है। उनके डिसीजंस में एक लॉजिक था, एक रिस्ट्रेंट था। अल्फा में मुझे लगा ग्लैमर ज्यादा था, ग्राउंड रियलिटी काफी कम। और जब स्पाई फिल्म में आप ऑथेंटिसिटी खो देते हैं तो टेंशन भी खो देते हैं। स्पाई फिल्म में सबसे बड़ा VFX ऑथेंटिसिटी होता है। एक और बात मेरी समझ से बाहर है, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स जिसकी पहचान कभी उसके म्यूजिक से भी होती थी, इस बार गाने आए लेकिन याद ही नहीं रहे। और बॉलीवुड में ये बहुत बड़ी वार्निंग होती है। अब देखना होगा स्पाई यूनिवर्स अपनी अगली चाल कैसे चलता है। फिलहाल नंबर 18 पर दूसरे हफ्ते में थोड़ा सा फिसलता हुआ, दिस इज क्यू फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17।

0: कभी कभी कुछ फिल्में रिलीज नहीं होती, हमें मिल जाती हैं, जैसे ये फिल्म मैं वापस आऊंगा। जब रिलीज हुई थी किसी ने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, फिर किसी ने देखी, किसी ने किसी और को बोल दिया यार ये फिल्म पक्का देखना, और बस वहीं से उस फिल्म की असली जर्नी शुरू हुई। इस दुनिया का सबसे पोटेंट और सबसे कामयाब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वर्ड ऑफ माउथ। ये इस दुनिया की सबसे ईमानदार पब्लिसिटी होती है, क्योंकि इसमें पोस्टर नहीं बोलता, इंसान बोलता है। और पता है इस फिल्म पर पूरी छाप इम्तियाज अली की ही है। उनकी फिल्में कभी मुझे थिएटर में समझ नहीं आई, घर आने के बाद समझ आई। कभी किसी तन्हा रात में, कभी किसी अधूरी मोहब्बत के बाद, कभी जब जिंदगी ने वो सवाल पूछे जिनका जवाब मेरे पास नहीं था, तब लगा इम्तियाज फिल्म नहीं बनाते, वो एहसास छोड़ जाते हैं।
1: आजकल के जमाने के आप लोग जो यंग लोग हो ना, आप लोग और भी ज्यादा किसी चीज को ढूंढ रहे हो। कहते हैं कि आपके हाथ में डिवाइस है, आप बहुत आसानी से रिलेशनशिप में जाते हो, ब्रेकअप करते हो, आगे बढ़ते हो, ये सब करते हो, बहुत आसान है आपके लिए। बट इस आसानी की वजह से ना एक्चुअली ज्यादा मुश्किल हो गया है, ज्यादा लोनली हो गए आप लोग, और जो लोनली होता है वो ज्यादा ढूंढता है। विच इज वाई हमेशा मैंने देखा है कि जो यंग ऑडियंस होती है इस फिल्म में, वो ज्यादा इमोशनली देखती है, ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होती है।
0: शायद इसलिए कुछ फिल्में फ्राइडे को रिलीज होती हैं और कुछ धीरे धीरे लोगों के अंदर पहुंच जाती हैं। और अगर आप किसी फिल्म के बारे में बार बार अलग अलग लोगों से एक ही बात सुनने लगे तो समझ लीजिए पिक्चर हिट नहीं हुई है, पिक्चर लोगों तक पहुंच गई है। नंबर 15।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 14.

कभी नोटिस किया है, हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर एक ही कंप्लेंट ट्रेंड करती है, बॉलीवुड को सीक्वल्स बनाना बंद कर देना चाहिए। एंड देन बॉक्स ऑफिस उस बात का बिल्कुल उल्टा करारा जवाब दे देता है। तुझको कॉकटेल 2 का ये खूबसूरत रोमांटिक गाना इस हफ्ते नंबर 14 पर है। फिल्म शायद उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर ना बनी हो जितनी उम्मीद थी, लेकिन इस साल की सबसे बड़ी कहानियां जरा देखिए, धुरंधर 2, बॉर्डर 2, वेलकम टू द जंगल, धमाल 4, ये सब फ्रेंचाइज फिल्म्स हैं। वेलकम टू द जंगल को लाउड बोला गया था, धमाल 4 को आउटडेटेड कहा गया था। क्रिटिक्स खुश नहीं थे, सोशल मीडिया भी इंप्रेस नहीं था, लेकिन जब टिकट्स बिकना शुरू हुई तो लोग थिएटर्स पहुंच गए। एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। प्रोड्यूसर्स इमोशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, प्रोबेबिलिटी में करते हैं। एक नई फिल्म को पहचान देने में करोड़ों लग जाते हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइज अपनी पहचान लेकर आती है। और शायद सबसे बड़ी आयरनी ये है, हम सीक्वल देखने जाते हैं और घर आकर ट्वीट करते हैं, बॉलीवुड शुड स्टॉप मेकिंग सीक्वल्स। यार हर सीक्वल अच्छा नहीं होता और हर फ्रेंचाइज चलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब तक ऑडियंस टिकट खरीद रही है तब तक पार्ट 5 भी बनेगा, पार्ट 6 भी बनेगा और पार्ट 7 भी बनेगा। और इस वक्त उसी सीक्वल की दुनिया से नंबर 13 पर है साड़ी, धमाल 4 से नंबर 13।

0: चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़े मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

You know, sometimes एक पुराना गाना जब वापस आता है वो हमें उस जमाने की याद दिला देता है जब उसे गाने वाली आवाज अपने करियर के पीक की तरफ बढ़ रही थी। इश्क अमीना इज टेकिंग अस बैक टू 2002, लेकिन मेरी नजर उस सोनू निगम पर है जो उससे पहले खुद को ढूंढ रहे थे। हर लेजेंड का एक गोल्डन पीरियड होता है, एंड सोनू जी के लिए वो पीरियड था व्हेन ही सैंग कल हो ना हो, मैं हूं ना, दो पल रुका, कभी अलविदा ना कहना, अभी मुझ में कहीं। लेकिन उससे भी खूबसूरत होता है उस लेजेंड के बनने का सफर। लेट्स रिवाइंड टू 1997। एक आवाज आई जिसने बताया कि बॉलीवुड को एक नया हीरो मिल गया है।

फिर एआर रहमान ने उस आवाज को आजमाया और सोनू जी ने साबित कर दिया कि मुश्किल कॉम्पोजिशन नाम की कोई चीज नहीं होती उनके लिए।

एंड उसके बाद आए कल हो ना हो, मैं हूं ना, अभी मुझ में कहीं, लेकिन मेरे लिए सोनू निगम का असली जादू उनके सुपरस्टार बनने में नहीं, उनके सुपरस्टार बनने के सफर में था। वैसे इस हफ्ते नंबर 11 पर है वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, मगर मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक उसी दौर का एक गाना है जिसे सुनते ही लगता है मोहब्बत भी कभी एक तनहा आवाज होती है। टॉप 20 रीवाइंड।